0: रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम, म्यूजिक मस्ती और खूबसूरत पैगाम। हम लेके आएंगे मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन, मन का अमन।
1: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: fucking window bitch. 88 pour info
1: पल के संपत्ति ना वाला पल के संपत्ति ना को चार राखी जाना माइक तरोशी का लक्ष्य निदाई वही तुमरा पांच स्टाइली ना ओ नजीना को चार राखी जाना।

किरना पिपट पे बंदे हटिना को गारा पिजाना मीनाथ जड़गिना को जारा पिजाना परगुराम दरा पिजान भी वही।

आपकी आपको लोग इसलिए मिस क्यों नहीं बोलते कि आप तो आपने तो अभी नाम अपना अभी ही बताया कि मेरा नाम अलीसा है। सो थैंक यू सो मच। अभी आप लोग अब लोग आपको भी सलाम करेंगे, ठीक है जी। और ये भी बताए कि आप हो कहाँ से। इंशाल्लाह खबर उखड़ला तो मसलों ना परेशान है, परेशान की बिल्कुल ना परेशान नहीं बजान लेना वर्क परेशान की डेर सूचना फिक्र रखे नुस्ता लगड़े सम कार चिकम दे लगड़े सम युक्त चिकम दे आगब पसी खराब सी नो इनशाला सूचना बकवे ना सासरे व्यक्तो से किस्म मसली मसाइल ली माता पसिफर 335 435 35 15 मानने तासु कालो की तासु मैसेज चुके और राशि मुसा प्रोग्राम के बरखा वाखले लाला जी मुंग ज्यात मिस कवल है तो जमुंग नेट अप उताना जार जारशम आता तो औटुलता बारे रिव्यू मुबारक ढेर साथ मने शुक्रिया वरीशा वफा में जन्नत गोला ले था वाई एस एम एस ओके सी अगीबा सा सुखा बाजूरी मैसेज वो की और बिल्कुल वरीशा वफा अमल जनत तासु डेर मोद बाद राली आखो प्रोग्राम चिमकम दे अलता वानी पसाबा अक्सर रिकॉर्डिंग चली दो

अच्छा भाई इस 2 बजे शो का बहुत कुछ भाई इस 2 बजे शो का अबाउट कुछ बताओ मैं समझ नहीं मतलब दर चीज बाबू 2 बजे प्रोग्राम है खास नो टेंशन वाला खा शुभ 10 बजे बजाय 2 बजे विषम بہرحال معلومات کو مزہ بتا سو سمر ادا ہے